विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश को नमन करते हुए हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है इस गीत के साथ। फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता, आवाजें ए हरिहरन और साथियों की थी। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम गणपति बप्पा बोरिया मोरिया के नाम। कहते हैं जहां गणपति का स्मरण होता है वहां शुभता अपने आप चली आती है, और हर नई शुरुआत से पहले जिनका

नाम लिया जाता है, वे हैं हमारे प्रिय गणपति बप्पा। तो आइए भक्ति और श्रद्धा से भरे इस सफर में अब सुनते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत।

गाने वाले कलाकार हैं शंकर महादेवन और साथी। गीतकार और संगीतकार डॉक्टर विजय भावे। गणेश

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर. सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

ये आवाजें थी तृप्ति शाकिया और साथियों की। आपने इनकी आवाज में ये गणेश वंदना सुनी। आइए सुनते हैं अगला गीत।

समूह स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये स्तुति, गणेश स्तुति, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत। आवाजें हैं अभिजीत सावंत और राहुल वैद्य की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गणपति वंदना सुनी। इसे चंद्रशेखर पांडे ने लिखा और धुन बनाई थी श्याम सागर ने। आइए सुनते हैं ये अगला भक्ति गीत, आवाजें जोनिता गांधी और साथियों की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर के स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए अगला भक्ति गीत आवाज़ें दिव्या कुमार और साथियों की। इसे मुकेश मिश्रा ने लिखा है और तर्ज बनाई है काशी कश्यप ने।

रंग तरंग कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर, शब्बीर कुमार और हेमलता की आवाजों में फिल्म मरते दम तक का ये गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को समर्पित था।
1: रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जीपी सिप्पी को। आज इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत। ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सजा। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सजा। और आइए अब सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, फिल्म का नाम 12 O'Clock।

0: la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर. सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी के कुछ फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों को। फिल्म का नाम है मरीन ड्राइव, गीतकार कमर जलालाबादी और संगीतकार एन दत्ता।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज का गीत। शब्दकार शमीम जयपुरी और संगीत दिया है कल्याण जी।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी अपनी फिल्म राज का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये दो गाना। स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के। फिल्म का नाम है भाई बहन।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ब्रह्मचारी से युगल स्वर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के।

0: ना तो आज बरसात का मौसम ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही

मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अंदाज। इसे हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इससे पहले आपने मुकेश

0: आवाज में फिल्म बंधन का गीत सुना था। शब्द अनजान के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम सागर।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म शान का ये गीत सुना। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

और ये है इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की।

इस युगलगान के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी की फिल्मों से कुछ गीत सुनवाए।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो आज तो हमारे श्रोताओं ने हड़ताली का तीज, गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हमें भेजी है। आप सबको भी हमारी तरफ से इन सभी खास पर्वों की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, हमें उम्मीद है आज आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी व्यस्तता के साथ साथ हमारे साथ इस सुरीला सफर पर भी आप निकलने के लिए तैयार हैं, क्यों है ना? चलिए तो आज के सफर में हम संगीत के लिए क्या लेकर जाने वाले हैं बताइए। जब सफर पर निकले हैं तो गीत तो गाएंगे ही, गीत सुनेंगे भी, लेकिन संगीत के लिए हमारे पास जरूरी नहीं कि सितार हो, तबला हो या बांसुरी ही हो। कभी कभी एक गिलास और एक चम्मच भी आपके गीत की धुन बना देते हैं। कभी घड़ी की टिक टिक, आपकी कदम ताल, आपकी चाल, आपकी हंसी, ट्रेन की छुक छुक या जो पास पड़ोस में या आसपास में पेड़ पौधों की आवाजें हैं, पशु पक्षियों की आवाजें हैं, हवाओं की आवाजें हैं, वो भी हमारे संगीत का हिस्सा बन जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में सुनिए ऐसे ही कुछ गीत जहां आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं रही बल्कि वे खुद संगीत बन गई है ना? तो हम तैयार हैं इस तरह के संगीत के लिए, क्यों आप भी तैयार हैं ना? तो आज की इबारत है हमारी कि क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ गीतों में कभी घड़ी की टिक टिक, कभी किसी खेल की आवाज, कभी कदमों की आहट और कभी कोई साधारण सी ध्वनि भी उस गीत की धड़कन बन जाती है। फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी कल्पनाशीलता से ऐसी ही आवाजों और बीट्स को गीत का हिस्सा बनाया और उन्हें संगीत में इस तरह ढाला कि वे उससे अलग महसूस ही नहीं होती, क्यों है ना? तो कहीं टिक टिक मेरा दिल बोले मैं आपको टिक टिक सुनाई देती है, तो कहीं ढल गया दिल में आपको रैकेट और शटल की आवाज गीत संगीत के साथ घुलकर एक अनोखा रंग भरती हुई दिखाई देती है, सुनाई देती है। यानी संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, कभी कभी वो हमारे आसपास की आवाजों में भी छुपा होता है। तो आज के सुरीला सफर में होगा ऐसे ही चुनिंदा गीतों का जिक्र जहां धुन के साथ साथ किसी खास आवाज को भी संगीत का हिस्सा बनाया गया उस संगीतकार के द्वारा जो गीतों को और भी यादगार बना गया। तो ये था हमारा आज का टेक्स्ट उन सभी लोगों के लिए जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उन्होंने हमारे टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे गीतों का जिक्र यहां पर किया है, क्योंकि हमने उन्हें दो उदाहरण ऐसे गीतों के दे दिए थे जहां वो इस बात से वाकिफ हो गए कि आज किस तरह के गीत हम इस कार्यक्रम में लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल से, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आराधना। आपको पता है इस गाने में हमें क्या सुनने को मिलने वाला है? ट्रेन की आवाज़।

ते हैं और अभिनेत्री यानी शर्मिला टैगोर दार्जिलिंग की जो खूबसूरत टॉय ट्रेन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसकी खिड़की से उन्हें देखती है। क्यों, याद है ना आपको ये सीन? और गाने की धुन और ताल कुछ इस तरह बनाई गई है जो टॉय ट्रेन की गति और उसकी पटरियों की आवाज के साथ बिल्कुल मेल खाती है और पूरा गाना जो पर्वतीय वादियां हैं और चलती ट्रेन का जो सफर है उसका एहसास हमें इस पूरे गाने में मिलता है सुनने को, है ना? और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लेकिन उससे पहले आपके संदेश आप तक पहुंचाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि संगीत केवल सुरों और शब्दों का नाम नहीं, वो तो हमारे आसपास बिखरी उन छोटी छोटी आवाजों में भी छुपा होता है जो अनायास ही मन के किसी कोने को छू जाती है। जब ये ध्वनियां किसी गीत का हिस्सा बनती हैं तो गीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होने लगता है। शायद इसीलिए कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं। वे हमारे मन की स्थिति को बदल देती हैं। उदासी में उम्मीद, अकेलेपन में साथ और खामोशी में संवाद तो कभी कोई मधुर आवाज बीते हुए प्रेम और यादों के दरवाजे भी खोल देती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी घड़ी की सुइयों की टिकटिक, कभी मैदान में किसी खेल की गूंज, तो कभी सन्नाटे को चीरती कदमों की आहट, ये सब केवल ध्वनियां नहीं है बल्कि जीवन की लय हैं। भारतीय सिनेमा के जादुई दौर में फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी अनूठी कल्पनाशीलता से इन्हीं साधारण आवाजों और बीट्स को गीतों का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने उन ध्वनियों को संगीत के ताने बाने में इस तरह पिरोया कि वे गीत में अलग महसूस ही नहीं होती बल्कि उनकी आत्मा बन जाती हैं। इन प्रयोगों से ये साफ होता है कि संगीत केवल बंद कमरों या स्टूडियो में तैयार नहीं होता बल्कि यह हमारे जीवन के हर हिस्से में सांस लेता है। कदमों की आहट से लेकर हवा की सरसराहट तक हर ध्वनि में एक लय है। जरूरत है तो बस संगीतकारों जैसी एक संवेदनशील सोच और पारखी कान की जो शोर के बीच से भी एक सुरीली धुन को खींच लाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दे। कितनी खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत फिल्म अलबेला से जिसका जिक्र हमने अपनी इबारत में किया था। आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर यानी सी रामचंद्र की, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, सी रामचंद्र का संगीत है और इस गाने में क्या सुनाई देता है? हाँ, घड़ी की टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक जो हमारे घर में भी हमें सुनाई देती है और एक मधुर संगीत खासतौर से रात के सन्नाटे में बहुत ही खूबसूरत संगीत हमें देती भी है ये घड़ी की टिक टिक।

लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजें थी। फिल्म का नाम था अलबेला। गाने के आरंभ में आपने घड़ियों की टिक टिक टिक टिक सुनी थी ना? सुनाई दी आपको? हाँ, कभी कभी इस संगीत को बहुत गहराई के साथ सुनना पड़ता है क्योंकि कुछ इफेक्ट्स बहुत ही हल्के से इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, कुछ का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है तो शायद उसे इतने गौर से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ इफेक्ट्स बहुत ही गौर से सुनने पर पता चलते हैं कि हाँ, ये इफेक्ट हमने सुना। और अब दो सवाल हमेशा की तरह आपसे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। हो सकता है आप वाद्य यंत्र नहीं बजाते हों या नहीं शौक रखते हों, लेकिन फिर भी जब आप कोई गीत सुनते हैं, आपने कोई गीत सुना होगा तो आपको लगा होगा कि यहां सितार का प्रयोग बहुत अच्छा हुआ, तबले का प्रयोग हुआ, या गिटार बहुत अच्छा लगा, या जल तरंग बहुत अच्छा लगा, या जैसे कि आज हम विषय लेकर आए हैं कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जो तबला, सितार, ढोलक इनसे अलग होकर बजाए जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र आपको पसंद है, बांसुरी, हारमोनियम, जो आप बजाते भी हैं या पसंद करते हैं? कभी कभी ये होता है कि जब हम घर में गाना गाते हैं ना, या बाथरूम सिंगर बन जाते हैं, तो टीन, कनस्तर, बाल्टी, झाड़ू और भी न जाने क्या क्या चीजों को हम अपना वाद्य यंत्र बना लेते हैं, है ना? होता है ना ऐसा? आपके साथ भी कभी हुआ होगा जरूर। याद कीजिए वो दिन जब आपने टीन, कनस्तर, बाल्टी या किसी भी ऐसी चीज को, मेज को ही अपना वाद्य यंत्र बना लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। और हमारा दूसरा सवाल कि आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियां प्रभावित करती हैं जो प्रकृति में हैं, या यूं कहूं कि ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जो आपको पसंद आती हैं या परेशान कर देती हैं? कम से कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को हम शामिल कर सकें उनके विचारों के साथ। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं। इस गाने में शंकर जयकिशन ने खास साउंड इफेक्ट्स का बहुत ही अनोखा और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। आपने सुना है ना ये गीत, जब बिजली कड़कने की आवाज आती है तो वो सिर्फ एक इफेक्ट नहीं लगती, बल्कि गाने के जो शुरुआती बोल हैं जहां रफी साहब कहते हैं कि बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गई, और उसके साथ ही बिजली कड़कने की और तेज बारिश की आवाज आती है, और लगभग ये आवाज पूरे गाने में हमें महसूस होती भी है। तो आप भी महसूस कीजिए इस आवाज को।

एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत जो हमें एक दैवीय शक्ति से बांधता सा लगता है, जैसे ही किसी जंगल में आप प्रवेश करते हैं जंगल की आवाज अलग अलग संगीत पैदा करती है। नदियों के पानी में अलग संगीत होता है, कलकल का संगीत बहुत मीठी मीठी है। संगीत बनने की कहानी रात के बहते हुए खामोश दरिया में चांद की किरणें खेलती रहती हैं और मन के बियाबान तारों में कुछ धुन यूं ही बजने लगती है। जो कोई हुक हो जी मैं तो गूंज उठेंगे, ये विरही सुर कोशिशों साधे नहीं जाते। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है, आज गीत की धुन के साथ विविध आवाजें भी अपने अस्तित्व का परिचय करवाएंगी। इस अनोखी सुंदर थीम को आज गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी है, गणराज रंगी नाच। तो इस मराठी गीत में बाल गणेश जी ने पैरों में पहनी यानी घुंघरू की रुनझुन रुनझुन, ये बेहद सुरीली आवाज दिल को मोह लेती है। और आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है, हो सकता है आपकी पसंद हमारी आज की लिस्ट में शामिल हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बिल्कुल नवीन है लेकिन बहुत ही रोचक है। गीतों में संगीतकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग, उनकी कल्पनाशीलता जिससे गीत शानदार हो गए। तरह तरह की बीट्स के प्रयोग ने गीत को कर्णप्रिय बना दिया है। ऐसे ही बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे चिड़िया या कोई भी गीत में पक्षियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है, जैसे कोयल बोली दिल कहीं रुक जा रे रुक जा, पंछियों की आवाजें और चुन चुन करती आई चिड़िया, इस तरह की आवाजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में सभी तरह के वाद्य यंत्रों के साथ ही आसपास मौजूद आवाज का प्रयोग कर गीतों की प्रस्तुति को लाजवाब बनाया गया है। पंख होते तो उड़ाती रे गीत में पंछी की मधुर आवाज के साथ पंछी की तरह उड़ते हुए पंख फैलाते हुए किया गया नृत्य बहुत ही आकर्षक भी लगता है। साथ ही संगीत का लाजवाब धुन आसपास के वातावरण को गुंजायमान भी कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सफर में आज गीतों में छुपे एहसास और दिल में भावों को जगाते हुए उन आवाज को सुनना, जैसे हवा की सरसराहट, दरवाजे की आवाजें, सांसों की धड़कन, कुछ मंदिरों की घंटियां, बांसुरी की, समुद्र की डरावनी लहरों की आवाजें और धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाजें, ये सभी आवाजें मन के हर भाव को जीवंत कर देती हैं। जीवन का सुख दुख, हंसना रोना, डरना सहम जाना आदि सभी नवरसों जो जीवन में समाहित है वो सभी हमारे साथ है और ये सभी हमें प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन गीतों के साथ हम भी खो जाते हैं उन खास संगीत की ओर जो हमारे संगीतकारों ने प्रयोग के तौर पर डाले होते हैं। जैसे कि अगला गीत हम सुनने वाले हैं फिल्म शोले से किशोर कुमार की आवाज में, और इनका साथ दे रही हैं हेमा मालिनी जब वो कहती हैं चल धन्नो। तो अब आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है। इस गाने में आपको चाबुक की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज, धर्मेंद्र के गिरने पर साइकिल की आवाज, साइकिल की घंटी की आवाज, बहुत सारे प्रयोग इस गीत में किए गए हैं और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी इन गीतों में ये सभी धुनें सुनाई देंगी।

जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है तो फिर एक दो तीन हो ही जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको जाना है कहीं और आप भागते दौड़ते स्टेशन पहुंचे हैं और आपके सामने से ट्रेन निकल गई है? और वही हुआ जो इस गाने में कहा जा रहा है कि एक दो तीन हो जाती है। हमारे सवाल एक बार फिर से, हमने आपसे पूछा था कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जो रूटीन के वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अगर आप हारमोनियम, तबला और बांसुरी, बहुत सारे माउथ ऑर्गन, सितार, गिटार, बांसुरी, क्या क्या पसंद करते हैं, अगर आप बजाते हैं या बजाना पसंद करते हैं, संगीत के शौकीन हैं तो। लेकिन इसके अलावा कई बार हर आदमी अपने जीवन में जब कोई गाना गाना पसंद करता है, बाथरूम में, कमरे में, एकांत में, तो टीन कनस्तर, जो हाथ में आता है बाल्टी, झाड़ू, उसे भी वाद्य यंत्र बनाकर हम गाना गाने लगते हैं। भाई, हमने तो ऐसा कई बार किया है कि टीन कनस्तर बजाकर ही ताल मिला ली है और गाना गा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। याद कीजिए उन पलों को, या आपके बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो वो बात हमें बताइए, कम से कम शब्दों में लेकिन रोचक तरीके से। और हाँ, जब बात चली है ध्वनियों की, तो आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियां प्रभावित करती हैं, यानी कौन सी ध्वनियां जो पसंद आती हैं और कौन सी ध्वनियां आपको परेशान करती हैं आपके घर के आसपास की? हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज आपने बहुत ही खूबसूरत विषय उठाया है, संगीत में आवाजों की मौजूदगी को महसूस करने का। गीत की दुनिया में सुर और साज की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी कोई अनगढ़ सी जानी पहचानी आवाज भी गीत को ऐसी आत्मीयता दे जाती है कि वो बरसों तक दिल में बसी रहती है। कदमों की आहट हो, घोड़े की टाप हो, या रेल की चुक चुक, घड़ी की टिक टिक हो, या पायल की रुनझुन, जब ये ध्वनियां किसी धुन में शामिल होती हैं तो गीत सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। हर आवाज अपने साथ कोई दृश्य, कोई मौसम, कोई बीती हुई स्मृति ले आती है। संगीत केवल वाद्य यंत्रों से नहीं बनता, वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में भी कहीं चुपचाप सुर तलाशता रहता है। बस उसे पहचानने के लिए कान नहीं, एक संवेदनशील दिल चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के संगीतकारों की सबसे बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने स्टूडियो की चार दीवारी से बाहर निकलकर हमारे दैनिक

जीवन के शोर को सुर में तब्दील कर दिया। जब किसी गीत में कोई सहज आवाज, चाहे वो खेल की हो, रसोई की हो, किसी वस्तु की हो, शामिल होती है तो वो केवल एक धुन नहीं रहती बल्कि दृश्य को श्रोता के जहन में जीवंत कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शॉप रोड टच है तो पूरा दिन वाहनों की आवाजाही रहती है, तो आवाजें आती है, अच्छा भी लगता है। हमें रेडियो सुनने का शौक नहीं है तो पूरा दिन वाहनों की आवाज से हम तंग आ जाते हैं। और अच्छा, आपका कहना है कि आपके आसपास जो ये शोर आता है उससे आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं, इस शोर से हम परेशान। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि हमारे आसपास की जीवंत ध्वनियों का खूबसूरत विस्तार है। फिल्मों में संगीतकारों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से घड़ी की टिक टिक, खेल के मैदान की हलचल या कदमों की आहट जैसी रोजमर्रा की आवाजों को धुनों में ऐसा पिरोया कि वे गीत की धड़कन बन गई। चाहे वो टिक टिक टिक मेरा दिल बोले हो या दिल की धड़कन बना हुआ कोई गीत, घड़ी की आवाज हो या ढल गया दिन, हो गई शाम में बैडमिंटन की रैकेट शटल की लय, ये ध्वनियां संगीत से अलग नहीं बल्कि उसका प्राण महसूस होती हैं। सच ये कि संगीत सिर्फ वाद्य यंत्रों से नहीं, हमारे परिवेश की हर धड़कन में छुपा है। बस उसे महसूस करने वाले कान और सुनने वाले बुनने वाले दिल की जरूरत है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोताओं ने लिखी है, तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही गीत जिसका जिक्र हमने भी अपनी इबारत में किया था और अभी अभी इन श्रोता ने भी किया है। फिल्म हमजोली का गीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है और इस गीत में क्या है ये आप जानते हैं। रैकेट और शटल की आवाज, टिक, है ना, सुना है आपने कितने तरीके से संगीतकार ने इस गाने में इस धुन को पिरोया है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि संगीत में साज तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की कोई साधारण सी आवाज किसी गीत में ताल बन जाती है तो गीत यादगार बन जाते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और वही बात आपने भी कही है कि पूरा दृश्य चलने लगता है और सच्ची धुनें बाहर से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की टिक टिक, छुक छुक और छम छम से ही छुपी होती है। बस उन्हें सुनने और महसूस करने के लिए एक संगीत प्रेमी दिल और दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नित्य नवीन विषय की निर्मात्री का नवीनतम अध्याय प्रशंसनीय, उल्लेखनीय और विचारणीय है। सुरीला सफर मंदाकिनी जी के निर्देशन में नई ऊर्जा से संचालित हो रहा है। नियमित श्रोताओं को स्फूर्तिवान रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। चित्र विचित्र वस्तुओं के ध्वनियों से गूंजती आज की सुरीला सफर का संगीतमय आनंद बना रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय हिंदी फिल्मों के संगीत में अलग अलग संगीतकारों ने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के अलावा दूसरी अलग अलग चीजों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अपनी संगीत रचनाओं में इस तरह पिरोकर ऐसा तिलिस्म रचा जो कि कालजी रचनाओं में शामिल हो गया। आपने भी कुछ गानों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी ये पंक्तियां संगीत को देखने का एक बेहद जादुई और अलौकिक नजरिया देती हैं। ये इबारत हमें एहसास कराती है कि महान संगीतकार केवल वाद्य यंत्रों के मोहताज नहीं थे बल्कि वे हमारे आसपास बिखरी रोजमर्रा की आम आवाजों में भी संगीत ढूंढ लिया करते थे। घड़ी की सुइयों के टिक टिक को दिल की धड़कन बना लेना या खेल के मैदान की टुक टुक को धुन में ढाल देना उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। संगीत सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता बल्कि वो हमारी जिंदगी की हर हलचल में छुपा होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार ओपी नैयर साहब ने अपने बनाए बहुत से गीतों में घोड़ों की टापों की आवाजों को शामिल किया और वो प्रयोग भी कामयाब रहा। और आरडी बर्मन साहब ने तो कंगी, टिन का डिब्बा, शीशे का गिलास, झाड़ू सभी बजाकर मधुर संगीत का निर्माण किया और वो भी सफल हुए। जितना हमें पता है वो सब आप सभी से साझा किया। अब देखना यह है कि आप अपने पिटारे में से कौन सी जानकारियां लेकर आती हैं। भाई हमारी भी जानकारी वही है जो आपकी है, लेकिन हाँ हम इधर से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उधर से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलते हैं अगले गीत की ओर। मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम सफर, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन और यहां पर आपने देखा होगा चप्पू की आवाज आती है, पानी की आवाज, किस तरह से नाव चल रही है और ये आवाज हमें साफ साफ सुनाई देती है इस गीत के जरिए।

श्रोता लिख रहे हैं कि आज की उद्घोषिका मंदाकिनी जी और सभी को नमस्कार। आज का विषय बिल्कुल नवीन लेकिन बहुत ही रोचक है, हमें पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बचपन में परात को डफली बनाकर डफली वाले डफली बजा गीत की नकल की। जब मम्मी घर में नहीं होती थी, बस एक प्यारी सी दोस्त और हम होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि डीजे की आवाज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। अच्छा, एक श्रोता कहते हैं हमारे घर के पास ही दुर्गा मंदिर है, सुबह सोकर उठने से पहले ही मंदिर की घंटियां हमें जगा देती हैं। बहुत ही मधुर स्वर में घंटियों की आवाज आती है और हम उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, यानी हमारे सवालों का जवाब हमारे श्रोता दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय के होटल पर पहले बैठते थे तो चाय आने में समय लगता था, तो टेबल बजाना चालू कर देते थे और उसके साथ गीत भी गाना शुरू हो जाता था। बिल्कुल ये होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो दो डब्बे रखकर तबला बजा लेते हैं, वीणा के तंतुओं द्वारा उत्सव उत्पन्न झंकृत ब्रह्मांडनीय नाद अति सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक बजाना आए या न आए, पर ढोलक देखने के बाद तो दो चार थाप हम भी लगा ही लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पूरब और पश्चिम फिल्मों में ओम जय जगदीश हरे आरती में घंटी और शंख ध्वनि, ये आवाज हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, उसमें न जाने कैसी सादगी और मिठास है कि मन को बिना कुछ कहे छू जाती है। जब बांसुरी बजती है तो लगता है जैसे हवा भी कोई मीठी सी धुन लेकर हमारे पास से गुजर गई हो। उसकी आवाज में एक अपनापन सा है, न कोई शोर न कोई बनावट, बस कुछ सुर और ढेर सारा सुकून है। शायद इसलिए बांसुरी की धुन सुनते ही मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। बहुत सुंदर बात आपने अपने मन

लगती है, स्वाभाविक भी है। ये चहचहाट तो सभी को मधुर लगती है, लेकिन ये मधुरता कब तक हमें मिलेगी पता नहीं, जब तक मिले भगवान जी को समर्पित और नमन करूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गली मोहल्ले के छोटे मोटे फंक्शन में ढोलक एक आम बात हुआ करती है और कुछ लेडीज एक इकट्ठी होकर भजन कीर्तन या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करती है। ढोलक उसमें जरूर बजती है, उसमें मन भी लग जाता है और ढोलक बजाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारे रोजमर्रा के वाद्य यंत्र भी होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपनी बाइक पर गए हो या गाड़ी में गए हो, दोपहिया वाहन पर गए हो या साइकिल पर गए हो और टायर पंचर। तो ऐसा ही गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर से, जहां किशोर कुमार और साथियों ने इस गीत को गाया है। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, सचिन देव बर्मन की धुन है, और इसमें यही होता है कि टायर पंचर होता है और फिर उसमें हवा भरी जाती है। बहुत ही ध्यान से जब आप इस गीत को सुनेंगे तो ये संगीत भी आपको सुनाई देगा।

डायरी की हवा निकल गई। जैक लगाओ। किक किक किक किक। ट्रेनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

जी तो ये मस्ती भरा गीत अभी आपने सुना। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो हमें प्रॉपर ढोलक बजाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तबला और डोर बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुकर की जब सीटी आती है या टॉवल से भी गिटार बजाने का अभिनय कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इन्हें गिटार और बांसुरी जो है बहुत पसंद आती है। वहीं एक श्रोता को हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरा मंदिर में सत्संग में बहुत साल तक बजाया है। अभी ही 2 महीने पहले रामकथा का आयोजन किया था, तब स्टेज पर पूरे 9 दिन पखावज मंजीरे बजाई, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे बांसुरी और सैक्सोफोन वाद्य यंत्र बहुत पसंद है। और एक श्रोता को मुझे सभी वाद्य यंत्र पसंद है, लेकिन सैक्सोफोन और सितार को जिस तरह हमारे फिल्मी गानों में बजाया गया है तो वो कालजयी बन गए हैं और सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गानों में बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है।

का कलरव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जब ज्यादा चींची करती है तो गुस्सा भी आने लगता है। अरे क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ, चूंकि ये रीड वाला वाद्य यंत्र है अतः इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी बजाता हूँ। वैसे मुझे संतूर की आवाज भाती है, दिल दिमाग को झंकृत कर देती है। वही एक श्रोता को घोड़े की टापों की आवाज अच्छी लगती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज और टेबल को बजा के हम यूं तो गीत गा लेते हैं और कभी कभी ढोलक की आवाज के साथ भजन भी हम गाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। एक श्रोता को प्रकृति को सुकून देने वाला संगीत सुनना है तो सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाइए, वहां बहुत सारे पेड़ और चारों तरफ हरियाली होगी, पानी से भरा तालाब फिर नदी होगी, तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी ऐसा जानते हुए जब आप संगीत सुनेंगे तो उस संगीत का तो कहीं उदाहरण दूसरा मिलेगा ही नहीं, ऐसा आप लिखती हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पाकीज़ा, गीतकार कैफी आजमी हैं, संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब हैं। इस गाने के अंत में जो गाड़ी की आवाज है यानी सीटी जो बजती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और दिल को एक अलग ही भाव पैदा कर देती है हमारे दिल में।

दोस्तों, समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी कारण गाने के अंत में जो ट्रेन की आवाज हमें सुनाई देती है वो आपको नहीं सुनवा पा रही है। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम का अब वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तुम

0: क्यों ना सताओ हमको, हम जिए कैसे भला, ये तो बताओ हमको।
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप छप, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम

0: ही सहेली सभी सखियों को सभी सहेलियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
1: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपनी सभी सखियों को श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार। हाँ। और बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
0: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं आया।
1: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है।
0: हाँ।
1: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
0: और इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए विषय बताते हैं आज के। आज कथा सुधा में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग
1: जी।
0: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे, नदरी यखनू यानी कमल ककड़ी, उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी नदरू यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, वो क्या है आप बताइए।
1: देखिए आज है हिंदी दिवस। और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहां पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। और साथ में और भी एक खास बात है जो सारी दुनिया
0: भाई, पूरा देश
1: आ रहा है
0: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान है, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा, आज उनके आगमन का दिन है।
1: बिल्कुल, और चंचल सच कहूं तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली। तो वो जो हंसी पूरे साल घर में गूंजती रहती है, हम लाते हैं मंगल कामनाएं कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे खुश रहें, सलामत रहें। गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
0: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते हैं और बप्पा आते हैं तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी कहते ना कि तकलीफों को परेशानियों को हर लेंगे। आंगन में रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है बप्पा के आने से।
1: ये बात तो
0: बच्चों की जो हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी है या हम सब बड़ों की भी, वो इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है। और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
1: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं, है ना, सही बात। और जब पूरा परिवार एक साथ आरती में खड़ा होता है या हमारी सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े होते हैं, तो सच में ऐसा लगता है बप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है।
0: तो बस बप्पा के आज का जो दिन है इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है, क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुलाकर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं। और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

0: पे। तो ये तो हुआ गणपति उत्सव के रंग में डूबा हुआ गीत, और अब बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की। तो सुनते हैं कहानी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
3: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर बार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से

0: ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें।
1: अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
0: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता।

0: सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्यामिट्री तो बस खुदा की पनाह।

0: ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिरपिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम जो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपके पन्ने चार रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। उल्टी बात या नहीं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
1: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है: छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस अंतराल से पहले हमने सुनी कहानी और उससे पहले हमने बात की गणपति उत्सव की। बहुत सारे संदेश हमारे सखियों ने भी भेजे
1: जी, बहुत सारे आए हैं
0: तो उनके संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं,
1: बहुत सारे संदेश। और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्योहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है और साथ में ये भी दिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एकता, उत्साह की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ बप्पा का हम स्वागत करें। इसी भावनाओं के साथ बहुत सारे संदेश।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भाई ने या सखी है, उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, लोग अपने परिवारों के साथ इस मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे एक संदेश में हमारे शोधा बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है, गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
1: बिल्कुल, और इसी तरह की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली

0: अपने घर पर लेकर आएं, उनकी मूर्ति और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
1: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पर ही मिट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
0: क्या बात है।
1: और ये अजमेर के श्रोता भाई हमारे श्रोता हैं और इन्होंने बताया है कि पूजा के रूम में उनको विराजमान करते हैं, 11 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका हम घर में ही अपने बगीचे में विसर्जन भी करते हैं।
0: कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समाज समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है या श्रोता है जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है।
1: और लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि घर में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जा आती है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: कितने अच्छे शब्द थे इस गीत के और बहुत सुंदर हिंदी का लालित्य इसमें देखने को मिला. और आज 14 सितंबर है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे हमने जो तारीख दिखी उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है. और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं.
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती
0: है. बिल्कुल,
1: कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत के बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना, बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा.
0: और 14 सितंबर 1949 को संविधान

0: संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं। और हिंदी बहुत खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है।
1: बिल्कुल, और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती है।
0: और हिंदी का असर पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा है। हाँ? अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा ला लेते था कविता का। और रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है और बहुत मधुर संगीत होता है। बरसों पुराने गीत जब हम सुनते ना तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो
0: क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। इंटरनेट हो या सिनेमा, टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक नई भूमिका इन सब ने निभाई है।
0: तो देखो एक कितना सुंदर संदेश हमें मिला है, हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बसे हुए हैं उनको जोड़ने का एक काम करती है। वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है। भारत में 22 भाषाएं और 72,507 लिपि हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, उन्होंने लगभग कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है। शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती हैं संस्थानों में। और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
0: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है तब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी चीज है।
1: बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल वैसे भी जरूरत हो गई है, लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं। और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कितनी सुंदर दो पंक्तियां लिखी हैं हमारे किसी श्रोता ने। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है की सूल। और आगे उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। बहुत सारे संदेश हैं, लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है।
1: चलिए

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात करने खाने पीने की बात हुई, मोदक की बात अलग हुई, लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए। और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है तो कश्मीर में ना कमल ककड़ी बहुत होती है,
3: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
1: हाँ,
3: लेकिन आज जो हम बात कर रहे
1: मतलब
3: हैं,
1: इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारे तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
3: और खासतौर पर चंचल जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, नहीं पसंद कर रहे या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है, तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं
1: जी।
3: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है जो कि बिना प्याज लहसुन के, जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब दो तीन लौंग 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना है छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फेंटना है ना तो फटे ना, इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि यूं
1: और
3: है,
1: जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार आप इसे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं।
3: बिल्कुल। अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है।
1: हाँ,
3: तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना तो पूरी अंदर तक की मिट्टी,
1: उसके छेद में अंदर तक मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है,
3: चिकनी होती है, तो वो सब बाहर निकल
1: आसानी से निकल जाएगी।
3: अब उबालना है इसे, तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर छान लेना है। अब एक कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो सब डाल लीजिए। फिर मसाला मिलाना है तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाए पका लीजिए या तब

0: वहां की ये पारंपरिक शाकाहारी डिश है और इसे दही की ग्रेवी में पकाया जाता है अक्सर। इसको पकाने के लिए 2 से 3 कप कटी हुई ताजी दही, 1 कप सरसों, लगभग उसी तरह की ये विधि इन्होंने बताई है। और इन्होंने बताया है कि मध्यम आकार के टुकड़े काटकर उबाल लें और फिर 10 मिनट तक पानी में उबाल लें, जैसा कि पिछली रेसिपी में भी था। लेकिन इसमें ये बताया गया कि ये खासतौर पर घी या सरसों के तेल में से पकाया जाता है, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसा कि इसमें पहले आपने बताया कि बेसन इसलिए मिलाना है ताकि दही ना फट जाए, तो अगर कमल ककड़ी आपको बनानी है तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा, क्योंकि हमारे पास रेसिपी सिर्फ सब्जी की आई है, आप कमल ककड़ी के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं, इसका कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन की बात।
1: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
0: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बातें, रेसिपी, श्रोताओं के संदेश और गीतों को मिलाकर हमारे जो प्रोग्राम का जायका है वो बन जाता है। तो एक गीत सुन ले।
1: चलिए।

0: प्रेम पुजारी फिल्म के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने। और जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना, तो मुझे याद आया कि आज हिंदी दिवस है, और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही ये गीत था
1: बिल्कुल।
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है, और बाद में उन शब्द रचनाओं के यानी कि जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतने सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बन गए हैं।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल,
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए, और बहुत सारी बातें करते गीत सुनते कार्यक्रम का समय पूरा हो गया, और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा
1: आप सभी को, दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।